0: है वो
1: जी फोन रिजेंसर।
0: Region 3, G48.
1: 2725 Louisiana, 216 Hotel Delta Hotel, 216 HDH on a silver Chevy Spark.
0: Civil.